सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निदाना तुमरी महिमा वर्ण ना साको तू ठाकुर ऊच भगवाना तुमरी महिमा वर्ण ना साको तू ठाकुर ऊच भगवाना सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ सोरठ महला पंजवा दुरत गवाया हर प्रभ आपे सब संसार उबारिया पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी अपना बिरद समारिया दुरत गवाया हर प्रभ आपे सब संसार उबारिया

नारायण कहत जम भाग पलायना नारायण दंत भानी डायना नारायण सद सद बकसिंद नारायण कीने सुख आनंद नारायण प्रगट कीनो परताप नारायण संत को माई बाप नारायण साध संग नारायण बारंगबार नारायण गायन बस्ती अगोचर गुर मिल लई नारायण ओट नानक दास कही नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायना

आपे देवड़ियाई आपे कर्म कराईंदा वड्डो वड्डा वड में जी सिरा सितंदा लाईंदा नगर पट्ठी जे करे सुल्तान काओ कराईंदा

0: गला करे कन्हीरियां खसम ना पाए सा आप गवाए सेवा करे ता किश पाए मान नानक जिसनु लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा
1: जो जी होए सो उगवै मोह का कहवाओ बिजे बिख मंगे अमृत वेखो एहो नयो महला दूजा
0: नालियां ने

नारायण दंता पानी डायना नारायण सद सद बक सिंदा नारायण कीने सुख आनंदा नारायण प्रगट कीनो परताप नारायण संत को माई बाप नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायना।

गई बस्ति अगोचर गुर मिल लही नारायण ओठ नानक दास गही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की साजी नवाजी साध संगत आवरभागी हो जो अमृत वेले हाजरियां पा रहे हो। गुरु साहिब जी कृपा करन सब दियां हाजरियां प्रवान करन गुरसिक्खी नाम दान बचन चढ़दी कला बचन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम हे गुरु सतनाम

0: अनुहा नाम तेरे संग सहाई, तै केवल नाम संग तेरे चले, हर को नाम खिन माहे उधारी, हर को नाम कोट पाप पर हरे, नानक पावो सुख कनेरे, नाम जप्त हुए सखिया
1: हर का नाम जप्त
0: निस्तरे, हर का नाम जप्त गावे, तै हर नाम संग होत सुहेला, नानक गुरमुख परम गत पाईए,
1: नाम जप्त पै
0: पार पराहे, हर का नाम तत्काल उधारे, नाम जप्त पावे विश्राम, हर का नाम कोट पाप खोवे, नानक पाइये साध के संग, हर का नाम उहां संग तोसा, हर का नाम संग जियारा, हर का नाम तै नाल पछानू, तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम, तै नानक हर हर अमृत बरखे, हर के नाम उदरे जन कोट, हर हर औखद साध कमात, पार ब्रह्म जन कीनो दान, नानक जन के बिरत बवेके, हर के नाम जन को तृप्त भुगत, हर नाम जपत कर परे न भंग, हर के नाम जन शोभा पाई, हर नाम जपत कछ नाहे वियोग, नानक पूजे हर हर देवा, हर तन जन को आप प्रभ दीना, हर प्रताप जन अवर न जानी, सुन समाध नाम रस माते, हर का भगत पगड़ नहीं छपे, नानक जन संकेते तरे, आम तेन हर हर गुण गाम, नाम सुरत दर्द दुख लथा, संत प्रताप दुर्त सब नसै,

आठ पैर कर तिसका ध्यान, तिस प्रभु को सा सा चितारी, सो प्रभु सिमरो सदा अनूप, सो प्रभु सिमर सदा दिन रात, गुर प्रसाद नानक जस कहे, जय प्रसाद पेखे बिस्माद, जय प्रसाद सुख सहजे बसना, जय प्रसाद सुपूरन फले, प्रसाद सुख सह समावे, गुर प्रसाद नानक मन जाग हो, तिस प्रभु को मूल न मनो विसार, री मन मूर्तु ताको जाप, तिसे जान मन सदा हजूरे, रे मन मेरे तू तास्यो राज, नानक जाप जपे जप सोए, आप गवाए सो हर गुण गाओ, प्रभु दयाते कमल बिगास, प्रभु दयाते मत उत्तम होए, आपू किछ न किन्हु जित

साध जना की आचरज कथा सा संग में सगली खोत साध के संग प्रगटे सो ज्ञान सा संग सब होत नवेरा साध के संग एक ऊपर जतन नानक साध की शोभा परम माहे समानी साध के संग सदा पर फुल्ल सा संग अमर रस पंचा साध के संग मनोहर बैन साध के संग अस्तित मन पावे सा संग नानक प्रभु सो प्रसन्न साधु के संग महापुनीत साध के संग ना बीगा पैर सा संग जाने परमानंदा के संग तजे सब आप नानक साध प्रभु बने आए साध के संग सदा सुख पावे साधु के संग अजर सहे साध के संग केवल पार ब्रह्म नानक साधु के कुर्बान साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है साध के संग शोभा सुर देवा साध संग अमृत गुण गायन नानक साध के संग सफल जन्म दर्शन पेटत होत निहाल साध के संग नरक पर हरे साध संग बिछरत हर मेला साध के संग न बिरथा जावे नानक उतरे साध सुन रसे साध संग हर के गुण गाओ सा संग सर पर निस्तर है साधु के कस अटकट डीठा सा संगत पई हमारी नानक साध पेटे संजोग जेता सुने तेता वख्याने साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा मूचते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई सलो मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेख है

फर्श प्रेत मुग्ध पाथर को उतारे, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, नानक तिस मिले जिस लिख्या तुर करम, तिसका नाम सत रामदास, दाद संतन पै तिन पाया, सो दास दरगे परवान, तिस दास को सब सोजी परे, ऐसी जुक्त नानक रामदास, जीवन मोक्ष सऊ कहावे, सदा नंत नहीं वियोग, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा रंग तैसा राजान, जिजत कर राखे तैसा तिन्ना, प्रभावे सोई फन होग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, पार ब्रह्म करता

कर्ण करावन करने जोग खिन में थापू थापन हारा हुक्मे तार अतार रहावे हुक्मे ऊच नीच व्यवहार कर कर देखे अपनी वड़ियाई प्रपावे मानुकत पावे प्रपावे बिन शास्ते राखे प्रपावे ता पत तू धारे दोहा सरिया का आप स्वामी जो पावे सो कार करावे कहो मनुख मानुख ते क्या होए आवे इसके हाथ होए ता सब किचले अनजानत बिख्या मह रचे पर मैं भूला दे दिस्तावे कर कृपा जिस अपनी भगत दे खिन में नीच कीट को राज जाका दृष्ट कछु ना आवे जाको अपनी करे बख्शीस जियो पिन सब तिसकी रास अपनी बनत आप बनाई इसका बल नाही इस हाथ आज्ञाकारी वपरा जियो कभू ऊंच नीच में बसे कभू निंद चिंद व्यवहार कभू बेता ब्रह्म विचार कभू नृत्य करे बहपात कभू महाक्रोध विकराल कभू होए बह बड़ राजा कभू अब कीर्त में आवे जो जो प्रभ राखे तिव ही रहे कभू होए पंडित करे बख्यान कभू तट तीर्थ स्नान कभू कीट हस्पतांग होए जिया नाना रूप जो स्वागी दिखावे ज्योतिष पावे सोई होए कभू साह संगते हो पावे अंतर होए ज्ञान प्रकाश मंतन नाम रते एक रंग ज्यों जल में जल आए।

संत के दुखन जमते नहीं छूटे, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन शोभा ते हीन, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए, नानक सत्संग निंदक पी तरे, संतन के दुखन काग जो लवे, संत के दुखन त्रिक जोन करमाए, संत के दुखन सबको छले, संत के दुखन नीच नचाए, नानक संत पावे तो ए पीगत पाहे, संत का निंदक टिकन न पाए, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को सदा वियोग, नानक संत पावे ता उसका पी होए बो, संत के दुखी को सब त्याग, संत का दुखी सदा बेकारी, संत की दुख सुख ते नानक संत पावित, संत का दुखी किसे का नहीं पहुंचे, संत का दुखी उजड़ पाइये, ज्यो सास बिना मृतक की लोथा, आपन बीज आपे ही खाहे, नानक संत पावे ता लए उबार, जो जल बिहोन मछली तड़फड़ाए, जो पावक इंधन नहीं त्रापे, जो बुआड़ तिन खेत माहे दोहिला, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, नानक ज्योतिष पावे सोई थिया, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी न मरे न जीवाइये, संत का दुखी उठ चले निराशा, जैसा पावे तैसा कोई होए, नानक जाने सच्चा सोए, सदा सदा तिसको नमस्कार, तिसे त्यागो सास ग्रास, जैसा करे तैसा को थिया, दूसर कहे बीचा, जिसनु कृपा करे तिसे आपन नाम दे, वड भागी नाम।

देवन को एक है भगवान बौन तिछने लागे आए मन के किछ नाही हाथ तिसका नाम रंग कंठ परोए नानक बिगन न लागे कोए करमन मेरे सत व्यवहार सदा सहेला कर ले जियो सा संग बिनसे सब चंग मिटे पाप जपिए हर बिंद हर दर के नानक उज्जल मथा सदा सदा हर के गुण गाहे शेतन गंत छनि संसार सदा सदा जानो ते सुखी इतुत कियो सोजी जाने नानक तिने निरंजन जानिया तिसकी जानो तृष्णा बुझे सर्व रोते हरजन रहत गृहस्थ में सोई निर्वाण तिसकी कटिए जम की फासा नानक तिसे न लागे दुख सो संत सहेला नहीं सो सेवक को किसते डरे अपने कारज में आप समाया गुर प्रसाद तत् सब बूझिया नानक सो सूखम सोई स्थूल आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ अनेक जुक्तर थाप उथाप तारन तारियो ब्रह्मंड आप जपाए ता नानक जाप सगल संसार उदरे तिन मंत प्रभु के सेवक दुख बिसारन गुर का शब्द जपै निहाल जिसनो कृपा करे वड़भागे नानक तिन पुर को उत्तम कर मान सदा सदा बसे हर संग करने हार पछाने सोए जैसा सा तैसा दिष्टान ओए सुख निधान।

सर्व जिया पे प्रतिपाल, तिस्ते बिरथा कोई ना है, अवनाशी प्रवापे आप, जैसे प्राणी लोचे कोए, गत नानक जप एक हर नाम, प्रभु की जो सगल कट सो है, जा सब कुछ तिरका दिया दरबे, प्रभु की कला बिना कहता वे, तिस देन हार जाने गवार, नानक सोजन सदा रोग, त्यों गुर का शब्द मने असमन, प्राणी गुर चर लगत निस्तरे, गुर दर्शन देख मन होए बिगास, त्यों साधु संग बिल जोत प्रगटावे, नानक की हर लोचा पूर, पूर्व लिखे का लिखिया पाइये, अवर्त्या तू किसे चितार, पूला काए फिरे आ जान, लप रो रस लोभी पतंग, नानक पासे ती कर जाहे, राम नाम हृदय में तोल, त्याग बिख्या जंजाल, मुख उज्जल हर दरगे सोए, हर प्रसाद को अपना जियो, साध उपर जाइए कुरबान, साध संग हर कीर्तन गाइए, हर गुण गाए अमर रस चाखे, सर्व सुख नानक तह पाया, भूखे को देवत धार, पूर्व लिखे का लेना पाहे, जिसमें दूसर हुआ न होग, सबते ऊच निर्मले करनी, नानक सोजन निर्मल थिया, तिस जन आवे हर प्रभ चीत, जाके हृदय एको होए, सच हृदय सच मुकैत, सच वर्ते सच

मन की तु प्रीत्याग को गैर गबीर गहीर सुजाना कृपा निधान दयाल बख्शंद नानक के मन यह नराओ जो किश पाया सोई होग इसका मंत्र न जाने और सर्व थोक सुनिए करता के तब में तपीसर ग्रस्त में भोगी नानक तिस पुरका के ने अंत न पाया सगल दे हारे अवगाहे सगल परोई अपने सूत जनदास नाम ते आवे से जन्म मरे फिर आवे जाए जैसा जनावे नान नाना फेक करे कनंग प्रभा बनासी एकंकार यो पूरन सब ठाए अपनी कीमत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सगलाकार नाम के संग उद्र सुन श्रवण केवल प्रधान सत पुरुषा माही समानी मूल सत सत उत्पत जिसे बजाए तिसे सपली विश्वास सत नान गुरते पाई सत्य जा जाके हृदय प्रवेश नाम जब ताकी गत होए आपे जाने अपनी मित गत करत विचार नानक ज्योति पावे सोई थी जिन पूजिया गुर के पचन पदार्थ लहे जाके संग तरे संसार जन के संग एक

एक सिमर नाम धार, चरण कमल हृदय में और तारो, दृढ़ कर कहो नाम हर वत, संच ना का निर्मल मंत, जन मिट जाहे, सोतन हर सेवा ते पावे, सो सुख साधु संग प्रीत, सासो बापज हर की सरनी, रोग मिटे हर अवखद लाए, जप नानक दरगे परवान, दै दिस्तावत आवे ठाए, जाके हृदय बसे हर सोए, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, भगत पाए आत्म प्रगास, कौ नानक काटी जमफासी, जन्म मरे सो काचो काचा, आप त्याग शरण गुरदेव, हर हर सिमरन प्राण आधार, सिमर शास्त्र वेद विचारे, मन बंचत नानक फल पाए, तू क्या लपटावे मूर्ख मना, इनते कहो तू कवन सनाता, इनते कहो कवन छुटकार, झूठा डंप झूठ पसारे, नाम विसार नानक पछताना, भगत बिना बो डूबे सियाने, निर्मल होए तुम्हारो चीत, जन्म जन्म के किल विख जाहे, सुनत कहत रहत गत पावो, सह सबाए नान गुन गाओ, बिन सजाए होमे बिक फैल, सास ग्रासर नाम समाल, सास संग पावे सच तना, इहा सुख दरगे जयकार, कौ नानक जाके मस्तक लेख, एक सिमर एको मन आहे,

नाम प्रभु का लागा मीठा अनेक रंग नाना दृष्टा है देही में इसका विश्राम कह न जाइय चर्च विस्माद नानक घट घट व्याप रहा भगवंत जैसी आज्ञा तैसा करम चार कुट दिसे समाहे गुर प्रसाद नानक सुख पाओ ससिय सो नखत्र में एक आप अडोल न कबू बोले मोल न पाइये गुणे अमोल तार्यो स्वामी ओत पोत नानक तिन में यह विश्वास संत जना के हृदय सब धर्म सर्वव्यापी राम संग रचन सत बचन साधु सब कैत हरन करावन हार प्रभ जाने नानक दर्शन दे समवे जिस प्रभ के सगली उत्पात जिस पावेता एक अंकार जिस पावे तिस लय मिलाए आपे आप भरपूर आप जाए सर्व नैना पेखन हारा आपन जस आप ही सुना आकारी किन्नी माया जो किछ कहना सो आपे कहे नानक जा पावेता लय समाए उरे कह किने कछ करा आपे जाने अपनी जी की ओत पोत अपन संग राज दूसर हो गुर प्रसाद नानक इहो जान आम लाए लय प्रभ सोए जीवन मुक्त रुजदे भगवंत जिस प्रसाद सब जग तराया जन के संचित आवे मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को

आस अनित त्यागो तरंग आप छोड़ बेनती करो हर तन के पर लिहो पंडार खेम कुशल सहज आनंद नरक निवारो उधारो जियो चित चित भव नारायण एक गोपाल दामोदर दीन दयाल सिमर सिमर नाम बारंबार उत्तम श्लोक साध के वचन संत कमावत हो तो उधार सफल जीवन सफलता का संग जय जय शब्द अनाहद वाजय प्रगटे कपाल महात के माथे शरण जोग सुन सरनी आए मिट गए बैर पय सवरेन सो प्रसन्न पय गुरुदेव आल जंजाल विकार ते रहते कर प्रसाद दया प्रवतारी प्रभ की उस्तत करहो संत मीत सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए सब ते उच पाए स्थान हर तन खाट चले जन सोए खेम शांत रिद नव निद विद्या तप जोग प्रभ ध्यान चार पदार्थ कमल प्रगास सुंदर चतुर तत् का बेता